Assalamualaikum. No, the ke mega divhe fe omega diga tune call lanti be mai hunte navara hu fa ver vagut kol kange do omega diga kuri agenda hunte ringe hovon show ya ke ga baddo kol yar gon shahuda e hunte ringe hovon show me do salme kuri agenda ne gar gar tiri sing ma me show ge hunte na gula la hunte nawa ka da kala idla la ta jahalum ge tur message taka wa ki has farat ka laveng has kol me nu jama ban me message ta vis phone alum ge fursat me show ge tere nit ke dan PSMA ऐप में तेरे को DFM 91 में पेज मैसेज कर मुंदा ने रुशो हमें को गुलाल देना ना नोट कोला बैवरी ना गुलाल हम गए तोरा शो के तेरे में मैसेज तक लावे रिक्वेस्ट कोरा फरात तो के मैसेज के हाल दी लावे जा हाल दिन बस ऑनलाइन ए मेरे को तो बस मैसेज कर मुंदा भी हम PSMA ऐप में तेरे को ए मैसेज तक की हाल देना शो फिशमट कवर रीति लावे इवाल दी फबदल कोला ना ये तो के शो गए हुन तेरी ना हुन तेरी गे हुन तक आए कीगा

गाड़ी में हमें बनी दिया कड़ी 26 मिनट हिंगा फकुरिया में दा हुन तेरे के हो वो शोक ना नोट कोला फवाए हुन तेरे के तेरे फुरतम बैवेरिया न्यूमा या गोड़ा लेवे तो मासे के में करेगा न्यूमा के नंबर बिजी हिंगे वार बोड़ा ना तीन फार मासे के कोले देंग अम्मार के रिक्वेस्ट किया देना हलो शहू हाउ हाउ जहा दी बल लोबिन ने हिनी तुम विलाशे ए तीन की अलावे नेते नुफेने के में ओड़े निगे हिनी तुम विलाशे तीनामु के एंडने लावे एहें भी मा ने जहाल देवे कशेंगे देवे वरा हास को वाइफ अम्मार एहें लावे कंगड़े रिक्वेस्ट को लब अधिस मासे के कोला ना निउमाय गुड़ा देवे तो आ निउमाय करनो गुड़े एहें भी माणिक का सीतुरु मिस्चे कियाल दी फलावें इवाल देना हाई शहु जहाल दी कभी हुशी कभी गम के बोले चोड़िया वरंग हास कोलम बेनु ठीक कोया कभी खुशी कभी गम के बोले छोड़िया ओके दिमिनी लवे कंग हमें कर नंजहाला फोन वाल दी फमीनी मर करेंगे अशफागे हिनी तुम वेला आ आ आ यस हिनी तुम वेला एहे में उम्मीद लो जहाल दी फबदो कोलाने मैसेज कुरवे ना आदि वेस 11 जहान ने शोक बैवर वाम बेनवा फरात का मैसेज कोल देवे ने तें लावे हमे कना डोहाल बेनवा बैवर इन मैसेज लावे गे नन लीला फोन वाल देनी पीएस में ऐप में देर को डीएफएम 91 में पेज मैसेज कोलान

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवेही एफएम
1: दिवेही एफएम
0: दिवेही नाइक दिवेही नाइक
2: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवेही एफएम

0: ए हितुगे लोबी मिल्क कुरेवें देंगिने तो हिवस नेते ए हियालुं एकनिवेस आयरागे उफाविरकं इतुरु कोदिने बयां कुरंदति जजुबाततकें हितुगे उफं वेगें दिए ए आयरा फोन नगा कंफतुगे जस्साली हिंदो कंफतुगे गुगुमाले बारो फिरिहिं वंताडुं गैगे लोलितवेस कोले जेहिगें दिया फदा इहु सासे कुरेवने मेगे हा हर कुरिं ए अडीवुमुं वेस हितुका उफेदिकें ए जज़बात तक कुडमीस बदलें एस वेनुए ए अडुके बारुं हित वेगें दा गोते वेस बुनन दच्चे
1: गुड मॉर्निंग
0: आयरा अनिक्का वेस रीतिवा मेजुके कोंडी के इशीने
1: फतिस नमाद को फिंदा रेगल हूँ तो नहीं थी।
0: आयरा या शक के फेकिंग आहाँ ले वोने। मेदोस कोड जोहन ऑफी हो गोले नी आवत नेती ए। दो होगे बोड़ पे आहे दबे किंदनी वेस ऑफी हो गए। मेवा गुतु लिबी फहुरी होरी हाँ प्रोजेक्ट तके कैविनी के कुरी निम्मा ले बेतो ए। कैविन या वागुतु उस कुरम बेनु वाती ए। प्रोजेक्ट आर्किटेक के वजीफा अदा कुरमुंदा जोहन नकी मसक्कत फरुवातेरी हीवागे जुवानेके दादि फहुं एने वणी माकामगे कुरियरुं विस्लिबिफे एकुग मजेके कुरा हुरिहामियुं गे लोयपा इहुतिराम विस्वणी होदाफे आयरा या बुने बुने ऑफियो का किनवागु तो है द कुरन जेही फवुमों एकम के नेते वे आसर जोहन के सीखता को फाने थी आयरा के हितु का कंबड़ हों भी ए माँ बोड़ंग एकमा वाह कर नुदक्कनी देमे तो का मसले जें बेन हुनुवाती ए कैवनी के तैयारी तक जोहन विस वागु तो उसकुरम बेन हुवाने कं आयरा यंगी ए मालो बदल कोलन जोहन बेन हुवुमों देंग इतुरंग एवाहक दिगु कुराकां आयरा नूलुने
1: या शी केम लास्ट नाइट मम्मी आते मैं हूँ उलुन वाला लास्ट वंदे कोरिया वाले विस लिस्ट दिगु वेज़े ही वाली
2: माय गॉड मुझे माले के मैंने मिलार दो वंदे
0: ने एवा कुतु जोहन ते फरात बोहुरा लाने मंजरो आयरा ऐसे फकुरे बने
1: ऐहिंता वानी ती एमी हूँ क्योंकि हम एक ने तारीफ़ लुविया, and my mom, well, she is a social butterfly. मामा नुदान ना मी है कुनो होना ने।
0: जोहन के लुई फिरी हिम वंता होनुम के आड़े हुने, आयरा के तुम फतवेस हिनी तुम वो में फेरी बेकिन दिए ए। ಕ್ಯಾವೆನ್ಯಾ ತೌವತ್ತೆವೆ ಮೆಹಮಾನುಂಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಐರಾಯ ಜೋಹನ್ ವಿಸ್ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ದೆಫರಾತುಗೆ ಆಯ್ಲಾಯ ಎ ಕ್ಯಾವೆನ್ಯಾ ದೆಫರಾತುಗೆ ಆಯ್ಲಾಯಂ ವಿಸ್ ತಿಯಿ ಬೊಡಿತಿ ತಯ್ಯಾರಿ ತಕಿವ್ವಮುನ್ನೆ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ತನವಸ್ಕನ್ ಲಿಬಿಫವಮುನ್ ಹುರಿಹಾ ಇಂತಿಜಾಮೆ ವಿಸ್ ಹಮಜಸಂ ಬೇನು ವೆಫವಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮೇಶೆ ಬೊಡು ಪಾಟಿಯ ಪಾವಂ ಬೇನು ನುವಿಯಸ್ ಆಯ್ಲಾಯ ಲಿಬಿಫಾವಿಂ ಉಫಾವಿರಿಕಂಗೆ ಸವಪುಂ ಎಚ್ಚೆ ಪುಣಂ ಬೇನು ನುವಿಯೆ हम ऐ को देफरातु के आइलैन लिपे मुंदिया एक बार दो मुंग हितुकोती निम्मेनुआ शुक्र वेरिकमे जोहन के आइला के फरातुन लिपे मुंदा लोबिंग आयरा के हितं बयां कुरंदति उफां वेरिकमे लिबि फविए हयातु के बैवरियकं जोहन इहुतियार कुरेव मुंग एकम के हिंहम जेहुं वेस ए हितुका विंदु चाहमुंदिए
1: जान इरुकल कुंकुला लानंगे आई नीड टू गेट रेडी
0: ಫಾರೂಕ ಹುರಿ ಗಡಿಯದ್ದಿಂ ಅವಸ್ ನಜರಕಫೌ ಐರಾ ಬುನ್ನೆ ಜೋಹನ್ ಫೋನು ಬೇವಿ ಐರಾ ಬಲಾ ಅಣ್ಣಾಣಿ ವಾಹಕ ಬುಣಮುನ್ನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹಕುವೆಸ್ ಐರಾ ಸ್ಕೂಲ ಗೆಂಗುಸ್ತಿ ಬಲಾವೆ ಸಣ್ಣಾಣಿ ಜೋಹಣ್ಣೆ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಬಿಸಿವಿಯಸ್ ಅಬದ್ವೆ ಜೋಹನ್ ಏಕಮ ವಗುತುಸ್ಕುರಾಣೆ ಐರಾ ಫೋನು ಬೇವಿರ್ವೆಸ್ ಏನಕಿ ತುಂಫತುಗವಿ ಹಿನಿತುಂಬುಮ ಫಂಡು ಕಮೆನ್ನಾದೆ